कईयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।

How dare you? 거벌 따져보지 주르기 꼬시스키. 계속해서 तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे. क्यों बार-बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? दूर रहो मुझसे.

मिंग सुन है पर तू हिम्मत न हार, दिल छोटा मत कर, साथ मेरे चल, मेरा हाथ पकड़ कर, आंखों में तू आंसू लेके सोया न कर, बेबी बादशाह की जान है तू रोया न कर।

गाने थे सुनते हम ईयरफोन की एक तार तेरे कान में एक मेरे कान में सीने पे रख के सब सितारों को उंगली से जोड़ जोड़ के बनाती थी तस्वीरें।

0: आप गौरी शंकर कैंपस गेट नजिक संपर्क नंबर 9841826910।
1: लो आयो है क्वालिटी में नंबर 1 दाम सबै भन्दा कम
2: ओ प्रकाश।